0: But we will surely cause those who disbelieve to taste a severe punishment, and we will surely recompense them for the worst of what they had been doing.
1: ذلك جزاء أعداء
2: C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में houseful shows के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को as रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की undiscovered stories live on stage 9 से 12 जुलाई. Eventim Apollo Hammersmith Hamari Ram.
3: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
2: Exclusive radio partner, Laika Radio.
4: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान. फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथहॉल ट्रेवल. Auto protected.

0: But those who wrong follow their own desires without knowledge.
1: इससे मालामाल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
2: You mean subtle travel?
1: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
2: एक बार आजमाइए जरूर Southall Travel.
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए.
2: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
3: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.

0: ये जमीन गा रही है, आसमां गा रहा है. What a beautiful track from the movie तेरी कसम, and this is in the vocals of Amit Kumar. अच्छा, इस मूवी में थे कुमार, गौरव एंड द ब्यूटिफुल पूनम ढिल्लो. सो हु आर यू? आई मीन आई एम श्योर आपको पता होगा दैट अमित कुमार सैंग ऑल कुमार गौरव सॉन्ग्स इन द मूवी, इन हिज डेब्यू मूवी लव स्टोरी. एंड वो गाने इतने इतने हिट हुए दैट अमित कुमार एक्चुअली बिकेम द वॉइस ऑफ कुमार गौरव. ऐसी बहुत सारी फिल्मी बातें मैं आपके साथ करता रहूंगा. आई एम वीर इन for the lovely Deep Raja giving you company all the way till 10 a.m. on your favorite radio station Laika Gold.
1: WhatsApp Laika Radio Greater Manchester now on 07703 40 30 20. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 127.2 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Laika Radio.
2: Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: Well, I'm sure all of us are super excited for the match later today between Norway and the home team, England. And that's at 10 p.m. And of course, don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Laika.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: We hit
3: Laika Radio.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
5: तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग.
4: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410. दैट्स 0208574 8410.
1: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
6: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Laika listeners get 10% off tickets and stalls with code LAIKA10. WhatsApp 07482 511 603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
7: वेडिंग, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: भैरतमान कोल दो ही चीज हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध. व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देख रो इनेज सरपंच.
9: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं.
8: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा. देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
12: Witness Diljit like never before, and it's not his performance, it's a reckoning. Watch Diljit as Jassi in Satluj, sirf Hindi Z5 par.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester. Broadcasting on 1377 AM and 963 AM. You can also catch us on DAB Digital Radio across Greater Manchester and East Lancashire. We're also available on Alexa. Simply tell Alexa to play Leica Radio Manchester. Or download the Leica Radio mobile app and listen to the entire Leica Radio network wherever you are in the world. This is Leica Radio. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London and Leica Gold Greater London? As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0161 250└

0: चलो ये भी वादा है, कह दू तुम्हें या चुप रहूं, दिस अमेजिंग ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड आशा भोसले फ्रॉम द सुपर हिट मूवी दीवार. आई मीन दिस इज वन मूवी जो आप कभी भी देख सकते हो एंड इट इज सुपर एंटरटेनिंग. क्या डायलॉग्स है, आई लव यू नो वो जो डायलॉग्स होते हैं बिटवीन शशि कपूर एंड अमिताभ बच्चन. वन ऑफ माई फेवरेट डायलॉग्स इज जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था. एंड यू नो आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? एंड देन शशि कपूर इन स्टाइल सेज मेरे पास माँ है. व्हाट लवली डायलॉग्स, क्या लिखे हैं जावेद साहब ने. आई मीन अमेजिंग मूवी. एंड इफ यू नॉट वॉच इट, आई एम श्योर हम सब ने देखी होगी, बट इफ यू नॉट वॉच इट डेफिनेटली डेफिनेटली वॉच इट.
1: ये है लाइका रेडियो.
2: Hey, this is Riz Khan and I'm taking you home on Drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio, Greater Manchester.

0: लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड मनोहर दास फ्रॉम द मूवी अभिमान अमिताभ बच्चन एंड अजया बच्चन. व्हाट अ लवली मूवी. एक और प्यारा वाला गाना इस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप से लाइका रेडियो .com पे एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी। This is Laika Radio, Greater Manchester. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Laika Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 822 or sales at laikamedia.co.uk. Deep Raja, waking you up every weekend. Laika.

0: इतना तो याद है मुझे दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब एंड लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी महबूब की मेहंदी.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.
0: ये लास्ट गाना दिस आवर बट यू स्टे ट्यून कॉज मेरे पास अभी भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने हैं इन माई गानों का पिटारा. फॉर नाउ एंजॉय दिस लवली ट्रैक फ्रॉम द मूवी दो रास्ते.

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. We are Laika Radio.
1: Laika Radio.
0: Listen to us in Greater Manchester and Greater London. Don't forget, in London, we're available on 1458 AM and DAB. Next, Ritu Sharma with the Ritu Sharma Show.
1: Laika Radio.
0: Greater Manchester.
2: मैं हूं इब्न ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक।

भूल गया सब कुछ, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी जूली. एंड इस गाने के बाद वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय, बट गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू रितु शर्मा. अप नेक्स्ट, लाइक अ रेडियो नेटवर्क.

0: और इस गाने में धर्मेंद्र बिल्कुल जट यमले पगले दीवाने ही लग रहे थे, और ये दीवानगी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में भी दिख रही थी जिन्होंने इस गाने को गाया है। और क्या म्यूजिक तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, एक सदाबहार गाना और उससे पहले आरडी बर्मन की आवाज। शोले फिल्म का गीत आपने सुना, और इन दो गीतों के साथ लीजिए एक बार फिर से आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। और मैं ऋतु शर्मा आप सभी को कहना चाहती हूँ गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। सैटरडे का दिन है और लीजिए शो की शुरुआत हो गई है, और उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वैसे ही खूबसूरत हैं, वैसे ही प्यारे हैं, वैसे ही खुश हैं जैसे हमेशा इस शो को सुनकर होते हैं और मेरा साथ भी दे रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बस आप हमारा साथ देते रहिए, हम यूं ही गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच ढेर सारे मैसेजेस भिजवाने के लिए, मेरे आने से पहले उन पर भी मेरी नजर जाएगी, लेकिन फिलहाल
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 आज आपको देगा 127.2 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा आपको ब्रांच में जाकर ऑनलाइन या फिर उनके योनो SBI UK मोबाइल ऐप के थ्रू। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a radio.
3: Like a radio.
4: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो भाई मैं जानती हूँ आप सबने रात में जागने की तैयारी कर ली है, क्योंकि 10 बजे से आज इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच में क्वार्टर फाइनल्स खेले जाने वाला है और सबकी नजरें उसी मैच पर टिकी हुई हैं। देखते हैं वैन कौन जीतता है। लेकिन आपको बताते चलें कि आप अपना 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैक लॉ से, और ये सब हो सकता है जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: ये है
1: लाइका रेडियो।

0: सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो,
1: हाँ थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: भाई दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा नहीं खूब जी लो, और सिर्फ लव ही करो, नफरत नहीं करो। क्योंकि कल मैं हमारे राम शो देखने गई थी जो बहुत ही कमाल का था, और मैं जरूर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। लेकिन आशुतोष राणा ने भी एंड में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कही थी जब वो लक्ष्मण को ज्ञान दे रहे थे कि हम जिनसे नफरत करते हैं तो हम भी उनके जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जहन में वो ही इंसान दिन भर घूमता रहता है। इसलिए उन्हें अपने मन से माफ कर दो, चाहे आप उनसे बात करो या ना करो, लेकिन अपने दिमाग से उनको निकाल दो, क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप हर वक्त उनके बारे में सोचे। दुनिया में और भी बहुत अच्छी चीजें हैं सोचने के लिए, समझने के लिए। तो इतनी खूबसूरत बातें कल मैंने उस शो में सुनी, मैं जरूर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, फिर कहती हूँ थोड़ी ही देर बाद। लेकिन उससे पहले हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स साथ देने के लिए जुड़ गए हैं, तो उनके दिल की बात जान ले।
2: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
3: This is Laika Radio.
2: Laika Radio.
0: बिल्कुल सही सुना आपने, ये है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर रितु शर्मा आपके साथ है, और आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और आपको बता दें कि आप अगर 90s के 2000 के बहुत सारे गाने सुनना चाहते हैं तो हमारे लाइका रेडियो से इस वीकेंड पर थ्रोबैक वीकेंड किया जा रहा है, तो सुन के देखिए, अगर आपको 2000 के और 90s के गीत पसंद है तो आप वहां भी जाकर उसे भी सुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं हमारे लिसनर्स की, जिन्होंने मुझे बहुत सारे प्यार के साथ ढेर सारे मैसेजेस भिजवाए हैं। थैंक यू मनीषा शाह, आप कल देखने जा रही हैं? ओहो, जरूर जाइए, मैं आपका बिल्कुल भी एक्साइटमेंट कम नहीं करूंगी। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी शो के बारे में, लेकिन कुछ बातें बताऊंगी जो आपको वहां जाने के लिए और भी एक्साइट कर देंगी। तो आप जरूर देखकर आइए मनीषा शाह। जयंत एंड मीना जी हमारे साथ हैं, सनी सैटरडे मॉर्निंग में गर्मी का मजा लेते हुए शो का आनंद उठा रहे हैं, क्या बात है। स्लाव में सुरजीत हमारे साथ हैं, हैरो में दिव्या जी हैं, टोरंटो में हमारे साथ उल्लास है, अर्जुन जी है, रुदा जी है, हरीश रुदा है हमारे साथ, संध्या भावसर है, रोशनी है, एंड हमारे साथ है हमारे राजेश जी। थैंक यू, कहते हैं आपको बहुत ही खुशहाल और मजेदार शनिवार की शुभकामनाएं, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू क्रॉइडन से महेंद्र पटेल जी, थैंक यू बानी जी, आपने मुझे फालूदा का ग्लास भिजवा दिया है, क्या कर रही है, आपको कैसे पता कि फालूदा मेरा फेवरेट है। आइसक्रीम हो, फालूदा हो, मैंगो शेक हो, कुछ भी हो, मैं सब कुछ खा जाती हूँ, मुझे सब इतना पसंद है, मुझे मीठा इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊं। तृप्ति आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेस शेख हिमांशु पटेल जी, थैंक यू। प्रज्ञा कहती है कहाँ थी आप, जमाने के बाद आई हैं। सच में प्रज्ञा, एक हफ्ते के बाद आई हूँ ना, तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं आप लोगों से कितने दिनों बाद मिल रही हूँ। ओहो हो, ऐसे गाना याद आ रहा है, लंबी जुदाई, ना ना मैं गाऊंगी नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है। तो थैंक यू हरीश खत्री जी, आंटी जी, सहर जी, अनिल सोनी जी, वियाना से तोची जी, मृदु जी, शेखर जी, एंड ऑफकोर्स हमारी मालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मैसेजेस मिल गए हैं, और जब मिल ही गए हैं तो अगला गाना क्यों ना आप सबके नाम किया जाए।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: लता जी और अमित कुमार की आवाजों में लव स्टोरी फिल्म से था ये गाना, जो विजेता पंडित और कुमार गौरव की फिल्म थी। और आपको बता दें कि कुमार गौरव, जिनका असली नाम मनोज तुली है, आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और आज वो 70 इयर्स के हो गए हैं। यस, कुछ बहुत ही अच्छी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं और उनके पापा ने ये फिल्म उन्हें लॉन्च करने के लिए बनाई थी। और हाँ, एक और बात बता दूं, उनके पापा कौन है आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, क्योंकि आज हम यादें में उन्हीं को याद करने वाले हैं। तो जरा बताइए कि कुमार गौरव के फादर का नाम क्या है, उनके बारे में होंगी बातें आज की यादें में प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Laika Radio.
3: Feel good tracks all weekend with Ritu Sharma on Laika Radio, Greater
0: जी हाँ, बिल्कुल, आप लाइव शो ही सुन रहे हैं मेरे रितु शर्मा के साथ और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। तो कुमार गौरव को हैप्पी बर्थडे कहते हुए आपको भी हैप्पी बर्थडे कह देते हैं अगर आज आपका जन्मदिन है और अगला गीत आपको डेडिकेट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले सुनील कपूर जी, आपने पोहे की फोटो भेजी है और कह रहे हैं खाइए। अरे भाई, पोहा थोड़ी नहीं भेजा है, कैसे खा लूं? फोटो भेजिए तो लिखिए देखिए, मैं देख रही हूँ और बहुत मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है, आप खाइए मजे के साथ और हमारे शो में बजने वाले गीतों को एंजॉय कीजिए। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगी कि कल मैं बहुत लकी रही, मुझे हमारे राम देखने का मौका मिला और मैं यही कहूंगी कि व्हाट एन अमेजिंग शो, हर चीज इतनी खूबसूरती से दिखाई है, हर एक्टर ने अपने किरदार में ऐसी जान डाली है कि आप उसमें खो जाते हैं। स्टेज पर क्या जादू क्रिएट किया है, स्क्रीन से, लाइट से, अपनी बोली से, अपनी भाषा से, अपने भाव भाव से इतनी खूबसूरती से सब दिखाया है। चाहे वो राम हो जो राहुल भुच्चर बने हैं, चाहे वो महादेव हो जो तरुण खन्ना बने हैं, या फिर हो रावण जो है आशुतोष राणा, हर कैरेक्टर को देखकर मुझे इतना मजा आया। हाँ, कुछ लोगों को शायद भाषा समझने की प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि वो हिंदी भाषा में है, लेकिन रामायण की कथा तो हम सब जानते ही हैं और अगर एक दो शब्द नहीं भी समझ में आए तो कोई मुश्किल मुझे नहीं लगती होती है, क्योंकि आप उसको जब देखते हैं सामने आंखों से तो वो सब कुछ आप फील करते हैं, समझ जाते हैं कि वो किरदार क्या कहना चाह रहे हैं। एक अनोखा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत सारे शो देखे हैं लेकिन ये कहूंगी कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और कभी कभार जब वो लोग डायलॉग्स बोल रहे थे तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे, मैं उसमें खो गई थी और बहुत अच्छा लगा। किरदार जो थे वो सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो आप सबके बीच में खड़े होकर परफॉर्म कर रहे थे, ये भी बहुत अमेजिंग बात थी। तो जो लोग गए होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि जब आपके पास में से राम निकलते हैं, जब आपके बीच में से हनुमान निकलते हैं तो कैसा लगता है। बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था। और जो नहीं गए हैं, जो सोच रहे हैं कि हम जाए या ना जाए, तो मैं कहूंगी जरूर जाइए, ऐसा एक्सपीरियंस आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। नहीं जाएंगे तो पछताएंगे, मैं तो बहुत खुश हूं जाके, मुझे मौका मिलेगा तो मैं दोबारा भी देख सकती हूँ। सो आई रियली एंजॉयड इट। और बस यही कहूंगी कि उनके लिए मेरी ओर से ढेर सारी तालियां, क्योंकि मैं कुछ और दे नहीं सकती। सो इट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग शो और जो कल जा रहे हैं यकीन मानिए आपको भी बहुत मजा आने वाला है।
3: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: लेकिन उससे पहले हमको बता दें कि आप हमारे राम तो देखने जा रहे हैं, लेकिन अगर घूमने जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी डील्स लेकर आए हैं साउथ ऑल ट्रैवल दुबई के लिए। आप उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर, ये सब है टॉल प्रोटेक्टेड है, और अपने टिकट्स बुक कीजिए।
3: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@laikaradio.com, or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@laikamedia.co.uk. This is Ritu Sharma. Like a radio.
4: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
5: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op Live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Like a listeners, get 10% off tickets and stalls with code LIKA10. WhatsApp 07482511603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
6: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
7: Radio partner, Leica Radio.
8: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
9: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
8: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
3: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation,
11: in Dubai.
12: You know how fans shout at football matches?
13: Oh, wake up!
12: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
14: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
15: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
14: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
15: दिल तो टूट पे गया,
14: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
16: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
14: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
17: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
3: This is the Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Leica Radio Greater London, Leica Radio Greater Manchester, and Leica Gold Radio.
18: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें Leica Radio Sales on 0161-250-8222 या email करें sales@leicamedia.co.uk.
19: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे Leica Gold Radio London and Greater Manchester in the evening show with Ashwini. Features बड़े ही interesting, amazing आप सभी के लिए.

0: योगेंद्र जैन जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। क्या संगीत है, क्या लता जी की आवाज है, क्या गाना है। प्रेम रोग फिल्म से लिया था ये गाना, चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू गिरी जी, भारत में आप हैं, पूछ रहे हैं मैं कैसी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सबसे मिलने के बाद मैं और अच्छी हो जाती हूँ। और बहुत सारे साथियों ने कहा है कि आप राजेंद्र कुमार के बारे में बात कर रही हैं। जी कोकिला पटेल जी बिल्कुल, हरीश खत्री जी बिल्कुल, राजकुमार जी, संतोष जी, तृप्ति जी, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार के बारे में, जिन्हें हम याद करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन उससे पहले एक मैसेज जरूर पढ़ूंगी। राजेश जी कहते हैं कि राम के शो पर आपके अनुभव और आनंद पर आपके ईमानदार विचारों की सराहना की जाती है। तो मैंने बिल्कुल ईमानदारी से बताया है, जो फील किया है मैं वही बता रही हूँ, और मुझे ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। आपको बता दूं, मैं कुमार विश्वास की राम कथा भी बहुत सुनती हूँ। आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगती है सुनकर, क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना, इतने गम है और स्ट्रेस है, इतने लोग आपको कई बार परेशान करते हैं, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती हैं और हम उन परेशानियों में खो जाते हैं। लेकिन जब मैं ये सब चीजें सुनती हूं ना, तो मुझे एहसास होता है कि क्या फालतू की चीज में मैं अपना दिमाग खराब कर रही थी। भाड़ में जान दो, इसके बारे में सोचना ही नहीं। इतना सुंदर भगवान ने जीवन दिया है और बहुत खूबसूरत चीजें हैं सोचने के लिए, इन सब के बारे में सोच के अपना जीवन क्यों व्यर्थ में वेस्ट करना। और ये सब समझ तभी आता है जब मैं इस तरह की बातें सुनती हूँ। तो कल भी मुझे वहां बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगता है ये सब सुनकर। तो अगर आपको भी इस तरह का चीजें पसंद है तो हमारे राम देखने जरूर जाइए। और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, अगर मैं बताऊं तो सारा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या करूं, आपको गाने भी तो सुनवाने हैं ना।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो £1 आज आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 98.8 pounds per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: LEICA Radio.
1: We are the LEICA Radio Network, now with 3 Asian radio stations in the UK.
2: We hit
1: LEICA Radio.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, auto protected.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Hero kadi wapas nahi aaye.
7: Did you hear that?
8: 1995 mein Punjab, jahan ek taraf police force militancy hatane mein lagi hui thi, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे।
7: गेट रेडी फॉर वन ऑफ द बोल्डेस्ट एंड डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियाज हिस्ट्री।
9: मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह?
7: सतलुज ऑन हिंदी Z5।
10: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया जैसी।
1: herald new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਖ ਰੋ ਇਨਨੈਸ ਸਰਪੰਚ।
11: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
10: ਸਰਪੰਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
12: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
13: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
14: Punjab's biggest tunes, non-stop.

0: क्या गाना है रफी साहब की आवाज में, धरती फिल्म से पिक्चर आइज ऑन राजेंद्र कुमार, और उससे पहले किशोर दा की आवाज में आप आए बाहर आई। और आई थिंक ये एक ऐसा इकलौता गाना था किशोर दा की आवाज में जो राजेंद्र कुमार के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। और आज की यादें में हम राजेंद्र कुमार को ही याद कर रहे हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था उस जमाने में। और वो इसलिए क्योंकि उनकी फिल्में लगातार ब्लॉकबस्टर होती थी। 60s के दौर में उनका सिक्का ऐसा चलता था कि थिएटर्स में उनकी फिल्में हफ्तों महीनों नहीं बल्कि सालों चला करती थी। एक बार लग जाए तो फिल्म उतरने का नाम ही नहीं लेती थी। ऐसे हीरो रहे हैं राजेंद्र कुमार, और इसलिए इनके हिस्से में बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें बहुत खूबसूरत गाने हैं। तो आज कुछ गाने मैंने चुने हैं जिन्हें मैं आज आपको सुनवाऊंगी, लेकिन कुछ बातें जरूर उनके बारे में बताऊंगी कि राजेंद्र कुमार के दिल में बचपन से ही सपना था कि वो एक एक्टर बने। हालांकि घर पे फादर का बिजनेस था, लेकिन उसे छोड़कर 50 रुपए लेकर मुंबई भाग आए और उन्हें पहला ब्रेक दिया के आसिफ ने। उनके साथ उन्होंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। जोगन फिल्म में दिलीप कुमार के साथ इन्हें एक छोटा सा रोल भी मिला, और इस रोल को करके राजेंद्र कुमार को जैसे चस्का लग गया। पहले तो वो डायरेक्टर ही बनना चाहते थे, लेकिन जब वो छोटा सा रोल किया तो राजेंद्र कुमार को बहुत मजा आया और उन्हें लगा कि अब तो शायद मैं हीरो ही बनूंगा। और उसके बाद उनकी फिल्म आई मदर इंडिया। मदर इंडिया में नरगिस के बेटे रामू का जो उन्होंने किरदार निभाया, रातों रात उन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया, रातों रात स्टार बना दिया, खूब पहचान मिली। और उसके बाद तो एक के बाद एक इनकी बहुत सारी फिल्में आई जो सुपरहिट होती गई। कई फिल्में हैं, लेकिन जिनमें से एक फिल्म है दिल एक मंदिर, जो आप सबके दिल के बहुत करीब है। अगला गीत उसी फिल्म से आपको सुनवाने वाली हूँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आज ये 1 pound के बदले में आपको मिल जाएंगे 127.2 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो चलिए आपको एक बार याद दिला दें कि आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच में क्वार्टर फाइनल्स का मैच है जो रात को 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही आपको 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस भी मिल सकती है विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Is Leica Radio.
3: From cuddles to intensive care, from school runs to sirens, for babies, young children and teens, illnesses like measles, meningitis and pneumonia can cause serious life-threatening complications and even be deadly. Making sure that your child is vaccinated is a safe and effective way to keep them happy and healthy. Keep them protected with the NHS vaccines offered to children. Search NHS GM Child Vax or contact your GP practice.
4: The Janan and JDoss Summer Sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Bradford, Manchester and Glasgow, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings. Your next look is waiting. Janan and JDoss Summer Sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
1: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
4: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
1: Exclusive radio party. Like our radio.
5: South of travel, 7 days a week. South of travel, 24 hours a day.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: Southall Travel, at all protected.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711. £7,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
12: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
11: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
13: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app.
2: This is Leica Radio,
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
2: This is Leica Radio,
1: Greater Manchester.
2: Leica Radio.

0: दिल एक मंदिर फिल्म से था ये गाना। शंकर जय किशन का म्यूजिक, राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी और राजकुमार की फिल्म। और इस फिल्म के लिए राजेंद्र कुमार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। और ये फिल्म 1963 में आई थी। और 60s का दौर राजेंद्र कुमार के जीवन का ऐसा दौर था कि उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट होती जा रही थी। और 60s में ही एक समय ऐसा आया जब एक साथ राजेंद्र कुमार की 6 से 7 फिल्में चल रही थी और सभी फिल्में 25 हफ्ते का आंकड़ा पार कर चुकी थी, यानी कि सिल्वर जुबली हिट हो चुकी थी। और इसीलिए जहां भी देखो सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र कुमार की फिल्मों के पोस्टर्स ही नजर आते थे, और इसीलिए उन्हें जुबली कुमार का नाम दिया गया। एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत है सुनवाने वाली हूँ, क्योंकि आज हम यादें में राजेंद्र कुमार को ही तो याद कर रहे हैं।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Leica Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Leica Radio.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म सूरज से लिया था ये गाना, जो 1966 में आई थी, शंकर जयकिशन का शानदार म्यूजिक एंड राजेंद्र कुमार वैजयंती माला की फिल्म। राजेंद्र कुमार की लाइफ के बहुत सारे किस्से बहुत मशहूर हैं, लेकिन एक उनके बंगले वाला किस्सा जिसके बारे में हर कोई बात करता है कि जब राजेंद्र कुमार अपने शुरुआती स्टारडम के दिनों में उन्होंने बांद्रा पर समंदर के सामने एक भूतिया माना जाने वाला बंगला खरीदा था और उन्होंने इसका नाम अपनी बेटी के नाम पर डिम्पल रखा था। और इस घर में कदम रखते साथ ही उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि वो जुबली कुमार बन गए। लेकिन बाद में जब राजेंद्र कुमार का दौर धीमा पड़ा, उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी और उस समय उन्होंने उस बंगले को बेचने का फैसला किया, तो उस समय के उभरते हुए कलाकार जो उस समय तक सुपरस्टार नहीं बने थे, राजेश खन्ना, उन्होंने उस बंगले को खरीदा, उसका नाम बदलकर उन्होंने डिम्पल से आशीर्वाद किया और इस बंगले में शिफ्ट होते ही राजेश खन्ना ने लगातार 15 ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी और वो देश के पहले सुपरस्टार बन गए। अब क्या कहते हैं आप, ये कमाल इन दोनों एक्टर्स की एक्टिंग का था या फिर उस भूतिए बंगले का?
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: Like Extra Podcast Update.
0: तो याद दिला दें आपको कि लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड आ गया है, पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है और इसका टाइटल है ईस्ट अफ्रीकन एशियंस। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं सभी लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जो है Spotify, YouTube, Amazon, जहां भी आपको सुविधा हो वहां जाकर सुनिए लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर मैनचेस्टर एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है लाइका रेडियो।
4: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op Live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482511603. Visit monosmarkets.com/tickets. Now,
5: after the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
6: Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August.
5: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
3: Radio partner Leica Radio.
7: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Sare Gamapa. Your voice could be the next big discovery.

0: वही नन्हा सा दिल माला सिन्हा का था, जिसमें साथ में थे राजेंद्र कुमार और ये थी फिल्म धूल का फूल, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी राजेंद्र कुमार की, और आज हम उन्हें ही यादें में याद कर रहे हैं। अपने जमाने की सारी सुपरस्टार एक्ट्रेसेस के साथ राजेंद्र कुमार ने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्म्स दी हैं, क्योंकि खुद ही एक बहुत बड़े हीरो थे। लेकिन जानते हैं आप, फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर और राजेंद्र कुमार एक बहुत गहरे और पक्के दोस्त थे। आपने सुना होगा वो किस्सा कि जब राजेंद्र कुमार और राज कपूर दोनों एक साथ नजर आए थे फिल्म संगम में। दरअसल जब राज कपूर ने संगम फिल्म बनाने के बारे में सोचा तो मेन लीड रोल में तो उन्होंने खुद को लिया, और सेकंड लीड के लिए वो दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि सेकंड लीड भी कोई बहुत बड़ा हीरो करे, लेकिन दिलीप साहब ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि वो सेकंड लीड था। और उन्होंने दो चार हीरो से और पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया। और राज कपूर राजेंद्र कुमार से नहीं पूछना चाहते थे क्योंकि राजेंद्र कुमार उस समय टॉप में चल रहे थे। लेकिन जब राजेंद्र कुमार को पता चला कि उनका दोस्त कुछ परेशान है, उन्होंने उससे पूछा क्या बात है। राज कपूर कहते अरे रहने दे, बोले नहीं कहो तो क्या बात है। और जब उन्होंने अपनी दुविधा राजेंद्र कुमार को बताई तो वो बोले बस इतनी सी बात, मैं करूंगा तेरी फिल्म में। राज कपूर दंग रह गए, बोले इतना बड़ा हीरो मेरी फिल्म में सेकंड लीड करेगा। राजेंद्र कुमार बोले तो क्या हुआ, दोस्त के लिए मैं इतना नहीं कर सकता। और उन्होंने इस फिल्म में सेकंड लीड रोल निभाया, जिसमें एंड में उनकी डेथ भी हो जाती है और हीरोइन हीरो के साथ चली जाती है। लेकिन इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार के उस रोल को इतना पसंद किया गया, ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, सारे रिकॉर्ड टूट गए। और इस फिल्म के बाद राज कपूर और राजेंद्र कुमार की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई। और बाद में राज कपूर ने अपनी बेटी रीमा की शादी उनके बेटे कुमार गौरव से भी तय की थी, जो किसी वजह से नहीं हो पाई। लेकिन ये दोस्ती आज भी फिल्मी गलियारों में, बॉलीवुड के किस्सों में, कहानियों में हमेशा याद की जाती है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 98.82 pounds per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. Leica Radio.
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: You mean Subtle Travel?
3: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
4: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: Call Subtle Travel 24 hours a day, 7 days a week. Week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.

0: जिंदगी वहाँ सैटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स.
1: Looking for an unforgettable week of film culture and star power? Then don't miss this year's Manchester Indian Film Festival, running from the 9th to the 16th of July. Watch Mahabharata across Manchester, Bradford and Sheffield, and the director Simon Brooks for a live Q&A. Watch Annie featuring the great Arundhata Roy, and All About Wedding, a fun Bengali comedy with a young cast that explores LGBTQ+ awareness within the South Asian community. Get your tickets now from manchesterindianfilmfestival.co.uk. Radio partners, like a radio network.
2: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
6: Have you noticed the way fans shout at football matches?
7: Oh, wake up!
6: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
8: Advertise here now. Call 0161 250 8222 or email sales@likeradio.com. Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Radio.

रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में था ये गाना और आज हमने राजेंद्र कुमार को याद किया यादें में। आज कुछ अलग गाने सुनवाए मैंने आपको, आई एम श्योर आपने पसंद किए होंगे। और राजेंद्र कुमार एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्हें उनके योगदान के लिए 1969 में भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें कई बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, कई बार उन्हें अवार्ड भी मिले, लेकिन वो आखिर में दुनिया से चले गए, कैंसर से पीड़ित रहे। और 12 जुलाई जो कल है 99 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन बहुत ही कमाल के एक्टर रहे हैं, कमाल की फिल्में हैं, कमाल के गाने हैं। ऐसा ही एक और गीत जो होगा आज की यादें का आखिरी गाना।

0: लीजिए अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में था ये गाना फिल्म चालबाज से, और उससे पहले आपने लता जी के साथ सुनी अमित कुमार की आवाज। फिल्म का नाम रोमांस, जिसमें कुमार गौरव और पूनम ढिल्लन ने काम किया था। और एक बार फिर से याद दिला दे कि आज कुमार गौरव अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनके साथ साथ अगर आज आपकी भी बर्थडे है तो आपको भी हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे। और लीजिए प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है, और इस आवर में आप मेरे साथ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनते हैं और हम खेलते हैं थ्री वर्ड्स गेम भी। तो चलिए तैयार हैं थ्री वर्ड्स गेम जानने के लिए, लेकिन उससे पहले जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं और आपको आज की यादों के गाने भी पसंद आए, सो थैंक यू। और अंजलि कहती है कि ये गाना जो आपने बजाया ना, मांग लूंगा मैं तुझे, आपको पसंद है, चलिए मैं इसको आपको डेडिकेट कर देती हूँ। शेखर जी, जुबली कुमार के गीत आपने इंजॉय किए, थैंक यू। रियाना से अनिल सोनी जी, थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू। और हरीश खत्री जी, हाँ, आइस लॉली आप भेज रहे हैं, यस मौसम है ये ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम और मिल्क जूस पीने का, सो थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू गिरीश जी भारत से, संध्या भावसर, थैंक यू शोभना राय, सपना परेश जी, थैंक यू मालती जी, थैंक यू सुनील कपूर जी, विजय गुनोवा जी, राजीव पटेल जी, और हमारे जितने भी साथी हमेशा साथ देते हैं आज भी जुड़े हुए हैं, सो थैंक यू। बिल्कुल आप सब तैयार हैं, आपके मैसेजेस बता रहे हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम की। तो हमेशा की तरह जो नहीं जानते उनको बता दूं कि बॉलीवुड के किसी एक गाने से जो शुरू की तीन चार लाइनें होती हैं वहां से मैं तीन वर्ड्स लेती हूं, और आपको बताना होता है, पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है दिलदार, दूसरा वर्ड है तैयार, और तीसरा वर्ड है पार। कौन सा है ये गाना, सोचिए। दिलदार, तैयार, पार, लता जी की आवाज है, 1972 में आई थी ये फिल्म और नौशाद का म्यूजिक है। देखें तो सही आप इस गीत को पहचान पाते हैं या नहीं, और अगर आप पहचान पाते हैं तो बस देर किसी बात की नहीं है, आप हमें अपना मैसेज भिजवाइए हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Greater Manchester now on 07703 40 30 20. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 127.2 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए कि ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: तो इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी है, तो सोचा क्यों ना अगले गाने से ही ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। सुनवाती हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना, जिसे लिखा है हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी ने।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive.
2: ये है
3: Leica Radio.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साफो ट्रेवल at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
6: in Dubai.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
8: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
9: कौन है जसवंत सिंह?
10: Witness Diljit like never before, and it's not his performance, it's a reckoning. Watch Diljit as Jassi in Satluj, sirf Hindi Z5 par.
11: Bradford Mela, 1st and 2nd of August, exclusive radio partner, Leica Radio.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
13: Four beers, please, garçon!
12: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
14: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: बेजान।
1: क्या गाना गाया है आशा जी ने और क्या लिखा है शकील बधायुनी ने, जो है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना भी, जिसे आप सबने पसंद भी किया है और आपके ढेरों मैसेज

0: शम्मी कपूर की फिल्म कल्याण जी, आनंद जी का म्यूजिक और मुकेश जी की आवाज, और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: फील गुड ट्रैक वाज ब्रॉट टू यू बाय LaikaRadio.com. वी आर लाइव अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर एंड ऑनलाइन वाया द लाइका रेडियो ऐप एंड वेबसाइट ऑन LaikaRadio.com. लिसन लाइव और लिसन बैक.
2: दिस इज लाइका रेडियो.
0: तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के हमारे थ्री वर्ड्स गेम की, जिसको बहुत सारे साथियों ने पहचान लिया है और कुछ साथियों ने जवाब सही नहीं भी दिया है, लेकिन ज्यादातर के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है नरेन पटेल जी आपका, संध्या भावसर, रेणु जी, गीता हर्षद जोशी, मनीषा शाह, रुखसाना अफजल फ्रॉम मैनचेस्टर, दिव्या जी हैरो से, अर्जुन जी, अमृता, भरत गंगाराम जी सहर, राजीव पटेल, करसिन पिंडोरिया, दिनेश पोपट जी, नीलेश तन्ना, अनिल सोनी, तोशी अमृता, अयुब चौहान जी, तोची पनेशर, उल्लास एंड कुकी. आई एम श्योर मैंने सबके नाम लिए हैं, लेकिन अगर किसी का छूट जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं फिर से चेक कर लूंगी. और अब थोड़ी ही देर में सुनवाती हूँ आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही प्यारा सा गाना आयशा जी और रफी साहब की आवाज में.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: ये भी राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला की फिल्म गंवार से लिया था गाना। और ऐसे और भी बहुत सारे गाने हैं जो राजेंद्र कुमार के ऊपर पिक्चराइज किए गए हैं। आज यादें में हमने उन्हें याद किया। गाने तो मैंने बहुत सारे सोचे थे लेकिन समय ही नहीं मिला उन्हें प्ले करने का। लेकिन ये गीत आप सबने पसंद किया है, थैंक यू। और थ्री वर्स गेम वाला गाना भी बहुत सारे लोगों ने सही बताया है। हाजरा जी आपका आंसर भी सही है और कहती हैं नौशाद नहीं है उसके म्यूजिक डायरेक्टर। तो भाई नौशाद जी भी हैं और एक और है, अगर दोनों नाम बता देती तो आपको समझ में नहीं आ जाता कि गाना कौन सा है, फिर सवाल पूछने का फायदा क्या होता है ना, इसलिए मैंने एक ही बताया है। लेकिन आप सबने सही पहचाना है। आज के सवाल वाला गाना हमने फिल्म पाकीज़ा से लिया है जो मीना कुमारी और राजकुमार की एक जानी मानी फिल्म है। और बस देर किस बात की, उस गीत को सुनवाने वाली हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Holiday breaks are brought to you by South Hill Travel.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि अगर कहीं जाने की सोच रहे हैं तो दुबई जाइए, साउथ ऑल ट्रेवल के पास बहुत अच्छी डील्स है। उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर, अपनी टिकट्स बुक कराइए, सभी कुछ इट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive.
2: ये है
1: Leica Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code Leica10. WhatsApp 07 4 8 2 5 1 1 6 0 3. Visit monosmarkets.com/tickets now.
5: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
6: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
5: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
4: Hey's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favorites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. New hits on Leica Radio.

0: जी हाँ रमीला जी, आपने भी हमें गाना बिल्कुल सही पहचान कर बताया है। ये आप सबकी फेवरेट पाकीज़ा फिल्म से लिया था गाना। आज का सवाल बहुत ही आसान था, तभी तो ज्यादातर साथियों ने बिल्कुल सही सही जवाब दे डाला।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: तो अब हमारा और आपका साथ काफी कम बचा है, लेकिन अभी तो मैं एक दो गाने और सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ साथी कह रहे हैं कि ऋतु हम भी शो देखने जा रहे हैं, तो बिल्कुल जाइए, देखने जरूर जाइए, क्योंकि आज दो शो थे, एक शायद हो गया होगा या चल रहा होगा, और एक आज शाम को है, और कल भी दो शो है, और उसके बाद सब खत्म। और बस मैं यही कहूंगी कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको मजा आएगा, क्योंकि हर किरदार को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, चाहे वो शूरपनखा हो, चाहे लक्ष्मण हो, जामवंत हो, गीधराज हो, सीता जी हो, हनुमान जी हो, मंदोदरी रंभा, श्री राम या फिर महादेव, कमाल का काम सभी ने निभाया है। और इतने बड़े बड़े डायलॉग्स कैसे बोले हैं। देखिए लाइव शो में तो रीटेक्स भी नहीं होते, जब आप थिएटर देखते हैं तो बिना रुके टुके बिना अटके खूबसूरती से काम करना कमाल की बात होती है। और एक और चीज बताना चाहूंगी, मैंने रियलाइज किया कि हमने हमेशा रावण को जोर जोर से दहाड़ मारते हुए, गुस्साते हुए, चिल्लाते हुए देखा है, लेकिन इसमें आशुतोष राणा ने हमें रावण का हंसी मजाक वाला हिस्सा दिखाया है। थोड़ा फन है, थोड़ी मस्ती है, एंटरटेनमेंट भी है, हंसी मजाक भी है, और नाराजगी तो जरा भी नहीं है। तो जो जिन्होंने टिकट्स बुक कराए हैं, आपको जरूर मजा आएगा, देखकर आइए। कल बात करते हैं कि आपको कैसा लगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, मुझे कल वहां हमारे बहुत सारे लिसनर्स से भी मिलने का मौका मिला, तो हमेशा ही जब आपसे मिलती हूँ बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लिसनर्स से बात नहीं हो पाई तो वो दूर से ही कह रहे थे, हाय टू वी लव योर शो। तो ये लाइन सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो थैंक यू आपके इतने सारे प्यार के लिए। अब बस इतना प्यार दे ही दिया है तो क्या करूं, एक गाना और सुनवा दूं। चलिए फिर हो जाए।
1: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। करेंसी अपडेट्स आर स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: आज £1 आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Known as Asian Sound Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 98.8 pounds per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
1: This is Leica Radio.

0: वैसे मेरी आंखें देखकर भी आप यही कहेंगे कि तू कल रात को सोई नहीं, क्योंकि मैं कल रात बहुत देर घर में पहुंची थी शो खत्म होने के बाद, तो मेरी भी आंखें लाल हैं और अब मैं घर जाकर चैन से सोने वाली हूं ताकि कल आपसे फिर से मिल सकूं। लेकिन अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक, न्यूज के उस पार अनुराग आपके साथ होंगे गोल पर, नीरज आपके साथ होंगे लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर, एंड हमारी फजीला होंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर आपके साथ। लेकिन आपको बता दें कि लाइका रेडियो लंदन पर थ्रोबैक वीकेंड चल रहा है, जहां पर क्लासिक्स आपको सुनवाए जा रहे हैं, और अगर आप 90s, 2000, 70s के गाने पसंद करते हैं तो आप लाइका रेडियो भी सुन सकते हैं, तो जो मर्जी सुनिए।
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 AM Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
0: मेरी ओर से आप सबको बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
2: ये है लाइका रेडियो।

0: ये है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल Auto protected.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
6: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St. James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
7: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है। बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल हैं। NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें।
8: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
9: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's mango pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
8: Jaimin Foods mango pulp. Available now.
10: Come on England. Roar it. Score it. Bring the World Cup home. All the best to England. From Leica Radio Network.
11: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Okie dokie, so the gold rate is £98.82 per gram.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Like a radio. Like a radio.
2: Janan. The Janan and J-Dos summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Bradford, Manchester and Glasgow, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dos summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one.

0: is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
1: High appreciation
2: in Dubai.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
5: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
6: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
7: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
6: A Leica Radio Classic plays now.

0: Good afternoon. दो गाने आपने बैक टू बैक सुने ऑन लाइक रेडियो नेटवर्क के जरिए, जहां भी बैठे सुन रहे हैं, चाहे आप लंदन और आसपास के इलाकों में हैं और लाइक गोल्ड सुन रहे हैं, या फिर लाइक रेडियो मैनचेस्टर सुन रहे हैं, मिडलैंड्स में सुना जा रहा है ये प्रोग्राम, जहां भी बैठे सुन रहे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती है आप ही की अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। होप यू वेल, हमेशा खुश और खैरियत से रहें, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करते रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूं और करती रहूंगी। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, गेट वेल सून। इफ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू एंजॉय। जी और शांत से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए ये गाने चुन चुन कर लाई है सरिता आप ही के लिए। प्रोग्राम के पहले दो गाने मैंने चुने और इस उम्मीद पर कि आपको जरूर पसंद भी आए होंगे। दोनों गीत बहुत खूबसूरत थे। क्या सोचते हैं, इनमें कुछ कॉमन था? क्या कॉमन था? कोई वर्ड कॉमन था या कुछ और? वर्ड भी कॉमन था और कुछ और भी था, मैं ही बताती हूँ आपको। टुडे वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ बॉलीवुड्स एवरग्रीन रोमांटिक स्टार कुमार गौरव, बॉर्न ऑन 11th July 1956 इन लखनऊ, बॉर्न ऑन एस मनोज तुली। जब ये पैदा हुई, इनको नाम दिया गया था मनोज तुली का। ही इज द सन ऑफ लेजेंडरी लेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी एंड मेड अ सेंसेशनल डेब्यू विद द ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी इन 1981, जिसका गीत आपने सुना आशा जी की आवाज में। और वैसे इसमें और भी बहुत से अच्छे अच्छे गाने थे, लेकिन मैंने चुना इस गीत को। द फिल्म बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ इट्स टाइम एंड इट्स अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स। कौन से गाने थे इसके, याद आए आपको? याद आ रही है, देखो मैंने देखा है एक सपना, दे आर स्टिल लव बाय ऑडियंस। Although many of his later films didn't match the phenomenal success of Love Story, he delivered memorable performances in films like Naam alongside Sanjay Dutt. Though Sanjay Dutt ka chota role tha, lekin somehow Sanjay Dutt ko is film se zyada fame mili aur unki gaadi aage nikal gayi aur inka kaam bhi zyada tha aur inka role bhi bahut khoobsurat and acting bhi bahut achhi thi, par inko नाम से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। एंड लेटर ही अपियर्ड इन कांटे, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ 2002। कुमार गौरव इज मैरिड टू नम्रता दत्त, नम्रता दत्त आप जानते हैं सुनील दत्त जी की बेटी, एंड मेकिंग हिम पार्ट ऑफ वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म फैमिलीज। आफ्टर स्टेपिंग अवे फ्रॉम एक्टिंग, इन्होंने अपने बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी या कुछ और। सो इवन टुडे कुमार गौरव इज फॉन्डली रिमेम्बर्ड फॉर हिज चार्मिंग स्क्रीन प्रेजेंस, यूथफुल रोमांस एंड द टाइमलेस सॉन्ग्स फ्रॉम लव स्टोरी विच कंटिन्यू टू डिलाइट म्यूजिक लवर्स अक्रॉस जनरेशंस। अब बाकी के तो जो गाने हैं इस सावर के, उनमें शायद ही कोई और गाना कुमार गौरव का मैं शामिल कर पाऊं, क्योंकि इन दोनों गीतों में एक वर्ड भी कॉमन था। कौन सा वर्ड कॉमन था जिस पर बेस्ड थे दोनों गाने, अगर आपको पता चल चुका है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इत्तला कर सकते हैं। वैसे आपके मैसेजेस मिलना शुरू हो चुके हैं, थैंक यू एवर सो मच। बड़े प्यार से आप मुझे लिखकर भेजते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसी तरह से आपका और हमारा प्यार बना रहे, सरिता तो बस यही चाहती है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ा लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 20 paisas today. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: We are to quarterfinals in Norway and England. Ke beech match hoga aur ye match shuru hoga raat ko 10 baje. Don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Laika.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Laika Radio.
3: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
4: Did you hear that?
5: 1995, Punjab. जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे.
4: Get ready for one of the boldest and darkest chapter of India's history.
6: मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह?
4: सतलुज on Hindi Z5.
7: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया जैसी.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies. To trade, visit heraldplastic.com.
9: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill, a desi tadka is total risk, hai na?
10: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
9: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
1: We'd love to know what you think of your new Laika Radio Greater Manchester. Email us today with your feedback. info@laikaradio.com. That's info@laikaradio.com.
11: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
12: Okay, help's on its way.
13: Grab my hand!
14: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
15: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
16: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears. Give or take. See radio differently at radiocentre.org.
1: Come on, England. Roar it. Score it. Bring the World Cup home. All the best to England from Laika Radio Network.
2: This is Laika Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Laika Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
2: This is Laika Radio.
1: Greater Manchester.
2: Laika Radio.
17: क्या कहने माशाल्लाह नजर तेरी रात की, क्या कहने मा...

होता है खींच लो तस्वीर आपकी, क्या कहने माशाल्लाह नजर तीर आपकी, जीता होता है खींच लो तस्वीर आपकी, जीता होता है खींच लो तस्वीर आपकी, क्या कहने माशा

ऐसी अदा पर निसार है, चांदी से गोरे हाथ में मेहंदी रची सुहाग की, इसके लिए वो नाजनी इतनी सजी हुई हाय दुल्हन बनी है आज तो तकदीर आपकी, हाय दुल्हन बनी।

0: चाहता है खींच लो तस्वीर आपकी, ये चाहता है खींच लो तस्वीर आपकी, क्या कहने माशाल्लाह।
1: कितना प्यारा गाना था। हाँ, जानते हैं किस फिल्म से था? वेल, टाइटल ट्रैक था जी चाहता है। यस, जी चाहता वाज द नेम ऑफ द फिल्म। 1964 में आई थी ये फिल्म, एंड इस फिल्म में जॉय मुखर्जी एंड राजश्री ने काम किया था। बहुत प्यारी फिल्म थी, एंड संगीत भी आपको जरूर पसंद आया होगा। गाने तो हमेशा चुन चुन कर लाती है सरिता। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, तो आपको जरूर पसंद आया होगा। तस्वीर आपकी, आजकल तो तस्वीरें इतनी कॉमन हो गई है ना, हर किसी के हाथ में कैमरा होता है, यानी हर किसी के हाथ में फोन है, फोन में कैमरा है, और कैमरे से जब जी चाहा तो किसी की भी तस्वीर खींच ली, और अगर किसी की तस्वीर नहीं तो अपनी लोग सेल्फीज बना लेते हैं। तो आप भी क्या सेल्फी क्वीन हैं? मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी सेल्फीज खींचती है। मैं कभी भी अच्छी सेल्फी ना खींच सकती हूँ, और ना ही मेरी कभी सेल्फी अच्छी आती है। आर यू गुड एट टेकिंग सेल्फीज? अगर हाँ, तो बड़े इत्मीनान से एक सेल्फी लीजिए और मुझे जरा व्हाट्सएप कर दे, मैं आपकी चेहरा तो देखूं कि आपके चेहरे पर इस वक्त कैसी मुस्कान है। तो जल्दी जल्दी अपनी अपनी सेल्फी लीजिए, तस्वीर खींचिए, और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर बताने का तो मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, और रटे हुए नंबर आपको, और आपके मैसेजेस बराबर मुझ तक पहुंच ही जा रहे हैं। तो जल्दी से एक सेल्फी खींचिए और मुझे भेज दीजिएगा। बाय द वे, ये गाना जो जी चाहता फिल्म से आपने सुना, ये गीत आप तक पहुंचाया।
2: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back. This is

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: ब्यूटीफुल गाना था फिल्म गाइड से, एस टी वर्मन साहब का संगीत, और क्या फिल्म थी। आपने देखी थी फिल्म गाइड? मैंने देखी थी और मुझे देवानंद इस फिल्म में बहुत अच्छे लगे थे, एंड वहीदा रहमान के सारे गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे जो गाना बहुत पसंद है वो था पी हथों से नैना लागे रे, और उसमें जो क्लासिकल बीट आता है वो और भी ज़्यादा शानदार लगता है। आपको गाइड का कौन सा गाना बहुत ज़्यादा पसंद है वो मुझे आप बता सकते हैं। वैसे इस फिल्म में एक एस टी बर्मन साहब ने भी गीत गाया था, अल्लाह मेघ थे, वो भी गाना बहुत खूबसूरत था। सो बताइएगा मुझे कौन सा अच्छा लगता है आपको गाना, गाता रहे मेरा दिल, दिन ढल जाए रात ना जाए, सारे गाने बहुत अच्छे थे। तो मुझे इंतज़ार रहती है आपके मैसेजेस की। सेल्फीज आ रही हैं, और जिन्होंने बहुत सारी प्यारी प्यारी सेल्फीज भेजी है उनके नाम आ रहा है ये आज का अगला गाना। जरा सुनिए और आपकी तारीफ में मैं नहीं कुछ और कोई कहने वाला है क्या। वैसे गीत जो है वो मुकेश जी एंड कंचन जी की आवाज में, जरा सोचिए सोचिए कौन सा गीत हो सकता है।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: इतना अच्छा लगता है ना कोई कहे कि तुम जान हमारी हो, तुम प्यार से प्यारी हो, क्या अल्फाज है, क्या बात है इन गीतों की। और इस गीत का संगीत किसने दिया था जानते हैं? ये भी संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। मैं सोच समझ के नहीं ये गीत चुन रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत आ रहा है, क्योंकि उनका संगीत है इतना खूबसूरत। फिरोज खान साहब ने बनाई थी ये फिल्म, डायरेक्ट भी की थी, इसमें उनके साथ ही हीरोइन हेमा मालिनी, रेखा भी थी एंड और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे। प्यारी फिल्म थी, सारे गाने भी अच्छे थे और स्पेशली ये गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। सो आपने पसंद किया ये, जिन्होंने भी मुझे सेल्फीज भेजी हैं ये उन सब के नाम गया। अब आप कहेंगे कि जिन आदमियों ने अपनी सेल्फीज भेजी है वो भाई वो बदल लेना आवाज, वो जो मुकेश जी की आवाज में था वो कंचन जी ले लें, कंचन जी वाला मुकेश जी। सो समझ लें कि ये आपके नाम भी था गाना। सो अगर आपने अभी तक सेल्फी नहीं भेजी है तो जल्दी से भेजिएगा। सोहिनी जी आपने एक्चुअली मुझे भेजा है मैसेज, सोहिनी रावल जी ने, और लिखा है कि सरिता मुझे पता नहीं चल रहा है कि स्टूडियो के नंबर पे किस तरह से व्हाट्सएप भेजा जाए। तो आपको व्हाट्सएप नंबर तो मालूम ही है और हम इतनी दफा व्हाट्सएप नंबर देते भी हैं आपको, बस जैसे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा मेरे पर्सनल पर वैसे ही वहां पर भी मैसेज भेजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपसे मैसेज रिसीव करके। और जिनके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं थैंक यू एवर सो मच, इसी तरह से मैसेजेस भेजते रहे।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: South of travel, 7 days a week. South of travel, 24 hours a day, we're at our peak.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Southall Travel.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Did you know you can get all the biggest showbiz news stories daily by logging on to LeicaRadio.com or the Leica Radio mobile app, powered by BizAsiaLive.com.
9: This is Leica Radio.
1: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London and Leica Gold Greater London. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0161 250

0: बड़ी प्यारी सी शिकायत थी इनकी, मैं क्या करूं राम पर, क्या को का बना दिया था इन्होंने, पर कोई बात नहीं, गाना तो आप समझते ही हैं क्या था क्या हो गया। एनीवे आपके मैसेजेस बराबर मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और सेल्फीज भी भेजते रहिएगा।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: भी आज आपको एक पाउंड के बदले मिलेंगे 127 रुपीज एंड 98 पैसे, पाकिस्तानी रुपीज 372.55, श्रीलंकन रुपीज 449.75, बांग्लादेशी टका 165.19, अफगान अफगानीज 87.43, केनियन शिलिंग्स 173.17, यूएस डॉलर्स 1.34।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Radio. LIKA Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: Gold ka rate hai is waqt market mein 98 pounds and 82 pence per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio. This is Leica.

0: जायका रेडियो,
1: बढ़िया सर्विस से मालामाल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
2: यू मीन सफल ट्रेवल?
1: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
2: एक बार आजमाइए जरूर साउथ होल ट्रेवल।
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
2: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
3: कॉल साउथ होल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
4: भरतमान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देख रहो इनेज सरपंच।
5: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
4: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
6: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482511603. Visit monosmarkets.com/ticket. Kids now.
7: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
8: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. Imagine X Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
9: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocenter.org.
10: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: मोहम्मद अजीज एंड एस जानकी जी की आवाजें आपने सुनी और सच कह रहे हैं कि जाते जाते जाते मुझे तुरु ला गई। एस जानकी प्लेबैक सिंगर, इन्हें आप बहुत से गीतों में इनकी आवाज को सुन पाए हैं, सुने और इन गीतों को आपने हमेशा पसंद भी किया। आज वो इस दुनिया को छोड़कर चले गई हैं और हमारी तरफ से उनके परिवार को श्रद्धांजलि, परिवार को हम दुख सहने की शक्ति देते हैं, मिले ऐसा कहूंगी मैं, और उन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर एस जानकी हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। शी इज रिपोर्टेडली डाइड एट अपोलो हॉस्पिटल इन मैसूर एंड आफ्टर कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू एज रिलेटेड एलिमेंट्स। एस जानकी अफेक्शनेटली नोन एज The Nightingale of South India enjoyed an extraordinary career spanning more than 6 decades, and she recorded thousands of songs in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Hindi, and several other Indian languages, and making her one of the most known prolific playback singers in India Indian cinema. Some highlights of her remarkable career is आप सभी को मालूम होगा कि उन्हें 4 दफा नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। शी रिसीव्ड मोर देन 30 स्टेट फिल्म अवार्ड अक्रॉस साउथ इंडिया, वाज रिनाउंड फॉर हर वर्सिटैलिटी, एफर्टलेसली सिंगिंग एंड क्लासिकल एंड ऑल्सो डिवोशनल फोक एंड रोमांटिक सॉन्ग्स, एंड उन्होंने बच्चों के भी बहुत गीत गाए और बहुत से लेजेंडरी सिंगर्स के कंपोजर्स के साथ उन्होंने काम किया, लाइक MS विश्वनाथन, इलियाराजा, KV महादेवन एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड मैनी मैनी मैनी मोर। इन 2013 शी डिक्लाइंड द पद्म भूषण, सेइंग द ऑनर हैड कम टू लेट इन हर करियर। And her passing marks the end of an era in Indian playback singing, and tributes are pouring from musicians, actors, fans across country, जहां दूर दूर से उनके लिए messages आ रहे हैं। सो उनकी यादगार गाने तो ज़्यादा साउथ के हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने म्यूजिक लवर्स को बहुत से मेमोरेबल गाने दिए। एक गीत आपने अभी अभी सुना, मोहम्मद अजीज के साथ गाया था। सम ऑफ हर वेल नोन बॉलीवुड नंबर्स आर लाइक यार बिना चैन कहाँ रे, पप्पी लहरी के साथ साहिब फिल्म में गाया था वो गीत, एंड सुन रूबिया, तुमसे प्यार हो गया, मर्द का गाना, एंड दिल में हो तुम, सत्यमेव जयते का गीत। एंड जब मैं सत्यमेव जयते का वो गीत जब भी सुनती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है वो गीत आशा भोसले गा रही है या एस जानकी। सो आज भी मुझे यही लग रहा था कि ये एस जानकी की आवाज़ है या आशा भोसले की। यू कैन कंफर्म, वैसे मैंने 3-4 दफा चेक किया और वो गीत एस जानकी जी ने ही गाया और बहुत खूबसूरत गाया। आई एम गोइंग टू प्ले इट इन अ शॉर्ट वाइल, तो आप सुनिएगा। ऐसे बहुत से मीठे मीठे गीत उन्होंने हमें दिए हैं, ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये भी बता दूं कि दूसरा गीत जो फर्स्ट सॉन्ग था इस आवर का, वो मैंने चुना था फिल्म मृत्युदंड से। मृत्युदंड फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी 1997। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित थी, शबाना आजमी थे एंड अयूब खान थे। प्रकाश झा साहब ने ये फिल्म बनाई थी। आनंद मिलिंद का था संगीत। उम्मीद करती हूँ वो भी गीत आपने पसंद किया।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Where your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 20 paisas today. And don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio. Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: आज रात को मैच होने वाला है, यूके टाइम 10 बजे शुरू होगा, नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच में बहुत बड़ा मैच है, ये क्वार्टर फाइनल्स का मैच है, तो जो फुटबॉल प्रेमी है दे विल बी ग्लूड टू द टेलीविजन। और बता दें कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स डेक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
4: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482511603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, atoll protected.
6: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
7: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
6: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
8: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
9: Want magic in every bite? Grab Hera Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hera Foods, king in quality, king in taste.
10: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
11: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work. For quick reply, affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app.
3: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
3: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
3: It's Leica Radio.

0: जब जब इस गीत को मैंने प्ले किया तब तब मुझे यही लगा ये आशा जी की आवाज है, लेकिन क्रेडिट्स में जब हम देखते हैं तो एस जानकी जी का ही नाम आता है जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गई हैं, लेकिन उनके गीतों के जरिए हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। उनका योगदान बहुत रहा संगीत की दुनिया में। शी वन 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर एंड रिसीव मोर देन 30 स्टेट फिल्म अवार्ड्स अक्रॉस साउथ इंडिया। उन्होंने बहुत सी लैंग्वेजेस में गीत गाए, बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गीत गाए एंड कुछ ऐसे यादगार हिंदी गाने भी हैं जो उनके गाए हुए बड़े मशहूर हुए, जैसे कि ये गाना जो अभी अभी प्ले हुआ है। इसके अलावा मैंने अर्लियर ऑन मोहम्मद अजीज जी के साथ उनका एक ड्यूएट आप तक पहुंचाया जिसे मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म, कौन सी फिल्म का गाना था वो, दैट वॉज ऑल्सो सत्यमेव जयते का गाना था एंड उम्मीद करती हूँ कि आपने जरूर पसंद किया। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे बहुत से साथी कह रहे हैं कि इनके और भी गीत शामिल कर दीजिएगा, सो आई विल डेफिनेटली एक और गीत ट्राई करूंगी कि मैं प्रोग्राम में शामिल कर पाऊं। और अब अर्जुन जी, भारती जी, संध्या जी, हरप्रीत जी, हरीश रूटा जी, वत्सला जी, सभी के मैसेजेस हैं मेरे सामने। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखकर आपने भेजे हैं जिनके लिए तहे दिल से आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ। सुभाष परमार जी कहते हैं गीत सुनते हैं तो पता चल जाता है कि आपका प्रोग्राम चल रहा है। थैंक यू सो मच आपके प्यार का। महेंद्र बजारिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश टकियार जी थैंक यू। तोची जी, निर्मलन कीरत जी, भारती डी जी, उल्लास इन टोरंटो, जगतार जी इन वैंकूवर एंड सहर, हना, मृदु जी, इंतशा, मिसेस शेख, तोची जी एंड तोशी, अमृता जी आप भी सुन रही हैं, सोनी रावल जी थैंक यू, हसमती जी आपका भी, हंसा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, भरत गंगा राम जी आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio.
0: जी हाँ, एस जानकी जी वाला गाया हुआ गीत डेरी वैली वालों ने ही आप तक पहुंचाया था। और अब एक और बहुत प्यारा सा गीत आ रहा है और ये फिल्म भी आज ही के दिन रिलीज हुई थी। कौन से ईयर में याद कीजिए, आप याद कीजिए और मुझे बताइए।

0: फिल्म का नाम था प्यार का मौसम, शशि कपूर एंड इस फिल्म की हीरोइन थी आशा पारेख। नासिर हुसैन साहब ने फिल्म बनाई थी, आर डी बर्मन साहब का संगीत, मजरू साहब ने गीत लिखा और ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी 1969।
1: Like a extra podcast update.
0: Right, we episode 24 is out now. East African Asians is the topic and iske host kon hai ye bhi aapko bata de. Is episode mein sheds out light on the roots and the identity and journey of East African Asians, from entrepreneurship and community spirit to overcoming discrimination. Aur isme agar aapne abhi tak लाइक का एक्स्ट्रा पॉडकास्ट नहीं देखा है तो इट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। सो इसमें होस्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए होस्ट का नाम नहीं लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा।
1: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर मैनचेस्टर एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है
1: Leica Radio।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danube, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
7: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: Punjab, the biggest tunes.

0: भी प्यार का मौसम का जब गीत सुना हमारी हरप्रीत ने तो कहती हैं कि लिखती हैं कि शशि कपूर इतने हैंडसम इतने सुंदर लग रहे थे उस गीत में और उस फिल्म में भी. अच्छा याद रखती हैं बहुत कुछ अब. और आपने कहा है कि यहाँ तो अभी भी हम कार्डिगन पहन रहे हैं तो थोड़ी सी गर्मी हमें भी भेज दीजिए. जरूर जरूर दिल के मौसम को अच्छा रखिए, अपने आप गर्मी आप तक पहुँचती रहेगी. और क्रिकेट का मैच भी तो चल रहे हैं इस वक्त इंग्लैंड और इंडिया के बीच. जो लेडीज खेल रही हैं उनके बारे में बता दें, इंग्लैंड ने बनाए 257 रन्स और 3 खिलाड़ी आउट हो गए और इंडिया 110 रन्स बना चुके हैं और उनके भी 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इन 10.1 ओवर्स में. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. इसी तरह से सुनते रहिएगा, जलाल आगा जी को भी हम याद करेंगे इन द नेक्स्ट आवर एंड उमा देवी यानी टुनटुन जी के भी एक आध गाना जरूर प्ले करने की कोशिश करूंगी. और अब प्रोग्राम का अगला गीत हमें पहुंचा देगा न्यूज तक. न्यूज के उस पार ही सरिता अब अपनी जुबान खोलेगी. वैसे आप सुनते रहेंगे गीत भी और संदेश भी, सुनते रहिए.
1: दिस इज लाइका रेडियो. Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410. Southall Travel, at all protected.
2: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
3: Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August.
2: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
1: Radio partner, Leica Radio.
4: Looking for an unforgettable week of film culture and star power? Then don't miss this year's Manchester Indian Film Festival, running from the 9th to the 16th of July. Watch Mahabharata across Manchester, Bradford and Sheffield, and the director Simon Brooks for a live Q&A. Watch Annie featuring the great Arundhata Roy, and All About Wedding, a fun Bengali comedy with a young cast that explores LGBTQ+ awareness within the South Asian community. Get your tickets now from manchesterindianfilmfestival.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.
5: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
6: Just one thing.
7: Witness Diljit like never before, and it's not his performance, it's a reckoning. Watch Diljit as Jassi in Satluj, sirf Hindi Z5 par.
8: LemFi means quicker and safe way to send money.
9: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
8: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
9: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
5: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
10: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why don't I need to take my...
11: Hey, boy!
12: Coast Guard, we're stuck.
13: Okay, help's on its way.
12: Hold on, mate.
14: Shoes, tide, phone.
15: Back before dark, love. Okay.
16: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: वेलकम टू द लास्ट आवर ऑफ द शो। अगर अभी सुनना शुरू किया है तो पिछले दो घंटे आपने मिस कर दिए, तो मैं चाहूंगी कि हमेशा 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरा ही साथ दिया करें। अगर आंखें रखनी है टेलीविजन पर, देखना है तो देख सकते हैं, घर के कोई काम करने तो कर सकते हैं, लेकिन कान मेरी तरफ होने चाहिए, ठीक है। अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन करती रहूंगी। अब ये दो गाने जो आपने सुने वो रेयर है, मैंने बहुत देर बाद प्ले किए होंगे। क्या आपको याद है कि लास्ट कब सुने थे? सो जो पहला गीत था वो था फिल्म दुलारा से, एंड दुलारा तो इतनी ज्यादा पुरानी फिल्म नहीं है, दुलारा 1994 की फिल्म है, जिसे भी मल कुमार ने बनाया था, डायरेक्ट किया था इस फिल्म को, एंड संगीत था निखिल विनय का, एंड गीत में आवाजें आपने सुनी कुमार सानू एंड अलका याग्निक के। इस फिल्म में किस किस ने काम किया था? गोविंदा थे एंड करिश्मा कपूर थे। लेकिन जो दूसरा गीत आपने सुना वो रेयर हिट था, इंसाफ की मंजिल था इस फिल्म का नाम, और इसे बराज भूषण ने बनाया था। इस फिल्म में शेखर सुमन थे एंड दिलीप सिन्हा थे, एंड गाने इसके कंपोज किए थे चित्रगुप्त जी ने। सो मुझे उम्मीद है कि ये गीत भी आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत कम बजता है हमारे यहाँ से, लेकिन मैंने सुनाया और आपको अच्छा भी लगा होगा। इसमें लीना दार भी थी एंड लीना दास भी थी एंड पूनम देश गुप्ता भी थी। एनीवे अभी अभी मुझे मैसेज मिला है, और ये मैसेज जयश्री जी ने लिखकर भेजा है, और लिखती हैं, बहुत अरसे के बाद आपका मैसेज मिला है, कि आप मुझे भूल गए थे क्या? बहुत दिनों बाद मैसेज लिखा। लिखती हैं, सरिता जी, टुडे माय हस्बैंड सुभाष परमार जीज बर्थडे, प्लीज कैन यू विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे जयश्री परमार एंड फैमिली, एंड प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर रफी साहब का, कोई भी गीत सुना दीजिए। तो हो सकता है मेरी प्लेलिस्ट में और भी गाना हो रफी साहब का, तो मैं जरूर उन्हीं के नाम करती हूँ। सुभाष परमार जी, आपको हमारी तरफ से, हमारे सारे लायका के परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी जिंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हजार बार आए, आप खुशियां मनाते रहें, एंड आपके साथ साथ अगर कोई भी जो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, या कोई और खुशी का मौका है, तो बराबर के शरीक हैं हम आपकी खुशियों में। आपको बहुत बहुत मुबारक।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 20 paisas. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app ke zariye. TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Yeah, yeah. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: चलिए भी रात को 10 बजे से पहले पहले अपने सारे काम खत्म कर लीजिएगा, ताकि आप आराम से बैठ के मैच देख सके। नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच मैच होने वाला है, एंड दैट इज द क्वार्टर फाइनल्स, सो जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही एक मैसेज है रेकलॉ वालों का, और वो ये मैसेज है कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद देयर स्पॉन्सर, हमारे जो स्पॉन्सर हैं रेकलॉ, इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
3: From cuddles to intensive care, from school runs to sirens,
4: For babies, young children and teens, illnesses like measles, meningitis and pneumonia can cause serious life-threatening complications and even be deadly. Making sure that your child is vaccinated is a safe and effective way to keep them happy and healthy. Keep them protected with the NHS vaccines offered to children. Search NHS GM Child Vax or contact your GP practice.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
8: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
1: Bradford Mella, 1st and 2nd of August. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Yeah, Leica.

0: शकील साहब ने लिखा था, शकील बदायूनी जी ने इस गीत को फिल्म घराना के लिए, एंड इस फिल्म के इस गीत के लिए इन 1962 ही वन फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड। क्या बात है, कितना प्यारा गाना, और उम्मीद करती हूँ मेरी चॉइस आपको पसंद आई। वैसे आपके मैसेजेस तो यही बता रहे हैं कि हर गीत के बाद ये लिखना कि क्या बात है सरिता, क्या कितना अच्छा लगता है जब कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में कोई भी मेहनत करता, किसी भी तरह की मेहनत करता है और लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग। थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और शकील साहब के लिखे हुए बहुत से यादगार गीत हैं, साहबीबी और गुलाम के, इसके चौथवीं का चांद के लिए भी उन्हें अवार्ड मिला था। एंड देन 20 साल बाद का याद है वो गीत, कहीं दीप चले कहीं दिल। जब मैं यंग थी तो ये गाना बहुत गाया करती थी, लेकिन अब नहीं। और मेरी सिस्टर भी हमेशा कहती थी कि यही गाना तुझे आता है, अच्छा लगता है। यह सजा का गाना जो था, तुम न जाने किस जहां में खो गए, वो गीत भी मेरे दिल के बहुत करीब है। सुभाष जी, आपने कहा था रफ़ी साहब का कोई गीत आपके नाम कर दिया जाए, आपका बर्थडे, तो ये गीत मैंने आपके नाम किया।
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
2: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
2: Leica Radio.
0: और इस गीत के जरिए हम याद कर रहे हैं जलाल आगा जी को। वैसे तो उन्हें याद किया जाता है, बहुत याद किया जाता है महबूबा महबूबा वाले गाने के साथ, लेकिन आज ही प्ले हुआ ये गाना सुबह।

0: और इसी गीत के साथ हमने याद किया कि नईन जलाल आगा साहब को वॉज अ टैलेंटेड बॉलीवुड कैरेक्टर एक्टर बेस्ट नोन फॉर हिज लाइवली स्क्रीन प्रेजेंस इन 1970s एंड 80s. ही वॉज बॉर्न ऑन 11th जुलाई 1945 एंड ही वॉज सन ऑफ वेटरन कमेडियन आगा. And as a child artist, he played the young Prince Salim in the classic Mughal-e Azam before going on to appear in more than 60 Hindi films, including Julie, Garam Hawa, Shole, Maan Jaiye, jiska geet aapne suna, Nokar, Baat Ban Jayegi, and he passed away on 5th March 1995 at the age of 49. क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई थी. इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, लाइक मंजली दीदी इन 1966, बासु चैटर्जी की सारा आकाश इन 1969, एंड इसके हवा फिल्म थी एक, उसमें भी थे, कर्ज में भी थे, ऋषि कपूर वाली कर्ज में इन 1980, जुनून इन 1979 एंड गमन इन 1978. बहुत सी फिल्मों में काम किया. थोड़ी सी बेवफाई, घर घर की कहानी बहुत प्यारी फिल्म थी और इसी फिल्म से मैंने चुना है आज के प्रोग्राम का अगला गीत. लेकिन जो गीत आपने अभी अभी सुना वो आप तक पहुंचाया.
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio.
1: This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Laika Radio.
1: Formerly known as Asian Sound Radio.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: क्या बात है, ऐसे ऐसे गीत आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं सुनने को मिलते हैं। और थैंक यू आपका भी जो मुझे हमेशा इनकरेज करते रहते हैं और हर गीत के बाद लिखते रहते हैं कि कितने पसंद आ रहे हैं आपको ये सारे के सारे गाने। थैंक यू, सुनते रहिएगा।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: राइट भाई, साउथहॉल ट्रेवल्स वालों का मैसेज मैं जल्दी से आप तक आपके साथ शेयर कर लूं। साउथहॉल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथहॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टिव।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल, At all protected.
3: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
4: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
4: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
6: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
7: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions. Especially on country roads, where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
1: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London and Leica Gold Greater London. As a combined network, we can give you a competitive rate. Spread your message to a wider audience. Call 0161-250-8222. That's 0161-250-8222. Or email sales@leicamedia.co.uk. This is Leica Radio. Greater Manchester. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161-250-8222 or sales@leicamedia.co.uk.
8: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: भी आज ही के दिन उमा देवी जी का भी बर्थ हुआ था, जुलाई द 11th 1923 में, एंड शी वॉज अपने समय की बहुत बड़ी सिंगर भी रही हैं और कॉमेडियन भी रही हैं, एंड इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया एज टुनटुन एज वेल, और टुनटुन को कौन नहीं जानता है, अनोखी अदा और नाटक एक रंग में सबरम, बहुत सारे इनके गाने मशहूर भी हुए, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली मेरे बाद ही आ रहे हैं ना विंटेज गोल्ड डे के सैंडी शाह, तो वो पुराने पुराने गीत आपको सुनवाते रहते हैं, जरूर सुनते रहिएगा। और अब ये गीत किसने आप तक पहुंचाए ये जान ले।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees. Kitne? 127.94. Pakistani rupees 372.43. Sri Lankan rupees 449.56. Bangladeshi taka 165.10. Afghanis 88.14. And US dollars 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: It's 98.82 per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: मैं हूँ इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक।

0: भाई मेरी मर्जी नहीं है जाने की, लेकिन जाने का वक्त है तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर जाए ना आने वाला, वैसे भी प्यार समझ ही नहीं आता है, इसलिए जो आता है उसको जाना होता है। और मेरे बाद बिल्कुल तैयार है सैंडी शाह आपका साथ निभाने के लिए, और वो आपका साथ देंगे टिल 10 o'clock। 10 बजे हमारी ओवरनाइट सर्विस शुरू होती है, गोल्ड नाइट्स जिसे हम कहते हैं, बहुत प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स होते हैं। एंड देन वीकेंड पे सभी प्रेजेंटर्स आते हैं, बारी बारी अपना काम करते हैं। लाइक सुबह दीप राजा आ जाएंगे, उनके बाद रितु शर्मा आती है, फिर अनुराग आते हैं, फिर सरिता की बारी आ जाएगी, और मेरे बाद फिर सैंडी शाह आएंगे विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर। और मेरे जाने के बाद अभी कौन आएंगे? वेल, सैंडी शाह होंगे यहाँ, एंड देन नेक्स्ट अंकुर विल बी इन मैनचेस्टर। तो अपने लोकल प्रेजेंटर्स को भी, आप वहां के प्रेजेंटर्स को भी सुन पाते हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से अब सरिता आपसे विदा लेने जा रही है, कल फिर मिलने का वादा है अगर जिंदगी ने साथ दिया। जिन मेरे साथियों ने पिछले 3 घंटे से बकायदा मेरा साथ दिया है, सुनते रहे हैं, अपने मैसेजेस भेजते रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये भी कह दूं कि आपने जो सेल्फीज भेजी थी, हाँ, वो भी, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। समर रियली रियली फनी, बहुत मौसम का पता चल रहा था कि आप मौसम को कितना इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हरप्रीत तो हमारी लिखती हैं कि भाई थोड़ा सा गर्मी हमें भी भेज दो वैंकूवर में, तो जरूर भेज रही हूँ मैं आपको, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से इजाजत, कल फिर मिलने का वादा है। इसी तरह से सुनते रहिए, हमेशा साथ निभाते रहिएगा। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने होने का एहसास दिलाते हैं, बताते हैं कि आप हमारे आसपास हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर्ब इवनिंग।
1: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywood's Surrenderella, panto fun for all the family.
2: Radio partner, Leica Radio.
3: Southall travel 7 days a week. Southall travel 24 hours a day. We're at our peak.
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there.
6: Southall Travel, at all protected.
7: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gama Pa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
8: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट solution for your business.
9: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
10: Rich, authentic taste every single time.
9: Royal Chai, brewed for business.
10: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
9: want magic in every bite? Grab Hero Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hero Foods, king in quality, king in taste.
11: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
12: Advertise here now. Call 0161 250 8222 or email sales@likeradio.com.
13: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
12: Your number one choice in Greater Manchester. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.

0: Mic Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: Started off my show with these banger songs. Shararat, kyunki main aaya hu to shararat to machegi 3 hours ke liye back to back. Aur saath hi saath tumhi ho bandhu. Bandhu hasan, you're my friend and you're gonna be my friend forever. I'm gonna be your friend forever. Mark my words, kyunki main jo kehta hu wo main definitely karta hu aur jo main nahi kehta hu na wo main usse pehle hi kar baithta hu. Dekho, aise jhoomte hue gaane aate rahenge. Baki party wali feel, I think garmi bahut hai. It's too hot out there. So ऐसे हैप्पी सॉन्ग्स प्ले कर कर मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पे मुस्कान रहे. सो लेट्स सेलिब्रेट आर आई थिंक दिस वेदर बिकॉज इट्स गोना लास्ट फॉर अ कपल ऑफ मोर डेज एंड देन थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा आई थिंक. सो लेट्स सेलिब्रेट. आई थिंक वेयर इज द पार्टी. जब लोग पूछ रहे हैं तो कह देना कि माइक ड्रॉप पर है अंकुर के साथ 7 to 10. यकीन नहीं होता, अरे गाना सुन के देखो. एंड बाकी एक और चीज आप कर सकते हो. इफ यू आर लविंग द म्यूजिक, if you're loving my voice, if you're loving my content, abhi content ki to shuruaat hui hai genuine, you can just drop me a message on 07703403020. Yes, that's my number, personal number hai, karo message, baatein karenge.
0: Encore on Leica Radio.
1: I told you, where's the party? Yes, party is with Ankur, only on Leica Radio, Greater Manchester. Mic drop, mere show ka naam. Entertainment ka dose lekar aana, yahi to hai mera kaam.

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: Honestly, I love myself more when I play such songs. The song was from the movie Mera Naam Joker, Raj Kapoor ka era. I think one of the best eras of Bollywood. Mukesh ki awaaz and kehta hai Joker, sara zamana. Dekho, Joker kahega, dunya zamana, ya phir pagal kahe, ya phir people might think ki they might laugh on you. Aap par hasi thadole kar le. Lekin ek cheez yaad rakho, life mein samay sabka बदलता है. टाइम पर वेट करो, वेट विश्वास रखो, ट्रस्ट एंड फेथ. अपने आप पर जब आप विश्वास रखोगे ना, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेसेस एंड लेट देम लाफ. बिकॉज आप ये सोचो दैट यू आर डूइंग अ गुड डीड. आप कुछ अच्छा कर रहे हो. किसी के चेहरे की मुस्कान की वजह बनना भी एक कला है, एक आर्ट है. तो वो हर एक में नहीं है, है ना. देखो, ऐसी अच्छी अच्छी बातें भी करता रहूंगा, अच्छे अच्छे गाने आते रहेंगे. नेक्स्ट ट्रैक कमिंग अप फ्रॉम द मूवी वॉर 2 एंड फिर इस आवर में पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर भी है, 90s का जो गाना आने वाला है. ओके, अफलातून. ये मूवी का अगर आपने गाने सुने हैं और अक्षय कुमार को 90s में देखा है, ओह माय गॉड, यू गोना लव दीस सॉन्ग्स.
0: द माइक ड्रॉप विद एंकर.
2: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस. विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल.

0: Ankur with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: अंकुर नाम तो सुनाया होगा, ओनली ऑन लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर. माइक ड्रॉप मेरे शो का नाम, एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आना, दैट्स माय काम. यस, स्टार्टेड ऑफ विद दिस बैंगर एंड इस सेकंड आवर में हम आ गए हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग व्हाट डेज, आज हम कौन कौन से डेज है जो कि हम सेलिब्रेट करेंगे. बट उससे पहले चुनरी चुनरी फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है, उससे पहले सारी फ्रॉम धमाल फोर. धमाल फोर आई है फ्राइडे, this Friday, and the movie has been doing so good. I might be watching it because I think comedy movies, it's a no-brainer movie. Of course, it has to be. क्योंकि अगर comedy में sense होगा तो फिर वो comedy कैसे होगी? So yeah, it's gonna be lovely. But you know what? मेरे लिए डेज इतने मायने रखते हैं, मेरे लिए रेडियो इतना मायने रखता है. कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, हो जाता है टाइम के हिसाब से. आज कौन सा दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बारे में बात करेंगे. बट मुझे ये बताओ, वर्ल्ड में टोटल व्हाट्स द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, कि कितने बड़ी पॉपुलेशन है. यू नीड टू टेल मी, लेट्स सी हु गेट्स इट राइट. कोई थोड़ा क्लोज भी आ गया तो मुझे मजा आ जाएगा सुन के, है ना. तो बताना 07703403020, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, व्हाट एग्जैक्टली द नंबर वुड बी, व्हाट डू यू थिंक, बताओ मुझे जल्दी से इस नंबर पे. अंकुर इज वेटिंग. एंड ये पॉपुलेशन भी इतना कैसे हुआ, कैसे हुआ, चलो एक काम करते हैं, ये गाने के थ्रू थोड़ा सा मजे ले लेते हैं बात के. बाकी आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. पॉपुलेशन का नंबर काउंट मुझे जल्द से जल्द बताओ.
0: Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: Mic drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: Even I am looking for these kind of people. Jaane wo kaise log the jinko pyar ke pyar mila. Pyar milne wale bahut naseeb wale hote, to be honest. I think ishq, mohabbat, pyar har ek ko hota hai. But bahut kam log hote hai jinke naseeb mein wahi mohabbat milna likha hota hai. Hai na? Aap sab relate kar paate rahoge ye baat ko, because but that doesn't mean ki life stops there. It's okay to not find love, you know. Ki jaise kehte na, ek aur dialogue hai ki mohabbat thi isliye jaane diya, zid hoti to baahon mein hoti. Wow, from Irfan Khan ki ek movie se dialogue hai, and ye dil ke bahut kareeb hai aur ye seedha dil pe lagti hai ye lines. To dhyan rakhiye in cheezon ka, baki muskurate rahiye kyunki aapne sahi jawab diya hai bahut sare logon ne. I am so happy and so proud of you. I asked you a simple question, world ki population kitne ke around hai? So people have started messaging me, and it is around 8.3 billion people. You know what? 8.3 billion people, and roughly 2.7 people to the planet every second they are born. They are just adding on. Wow, it is crazy. चलो एक और सवाल इसी से रिलेटेड, टॉप 5 कंट्रीज बता दो. मैं टॉप 5 में से दो कंट्रीज बता देता हूं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, इंडिया एंड चाइना ऑफ कोर्स. ठीक है, ये तो जग जाहिर है, बट नेक्स्ट 3 कंट्रीज कौन कौन सी है आप मुझे बताओगे कि पॉपुलेशन में टॉप 5 कंट्रीज के नाम. इंडिया एंड चाइना मैंने बता दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप मुझे बताओगे ऑन 07703403020. यस, आई एम वेटिंग विद दिस ब्यूटिफुल ट्रैक.
0: The mic drop with Anchor.
2: मैं हूँ इब्न ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक.

0: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can get you up to 127.2 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है। बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल हैं। NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें।
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
4: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410। साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
8: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
0: News headlines up next. Leica Radio, Greater Manchester. The Mic Drop with Anchor.

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: If you love these kind of Punjabi songs, drop me a message and tell me. क्योंकि मजा मुझे तो आ रहा है, आपको भी उतना ही आ रहा है, तो बेस्ट है. बाकी मेरा सिंपल सा सवाल था कि वर्ल्ड में पॉपुलेटेड कंट्रीज में से टॉप 5 कौन कौन से है. इंडिया, चाइना तो हमें पता थे, इंडोनेशिया किसी ने कहा था, एंड नेक्स्ट 2 कंट्रीज वुड बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पाकिस्तान. वाओ, देखो ये 5 कंट्रीज में दुनिया में इतने पॉपुलेशन है टू बी ऑनेस्ट कि बाकी कंट्रीज कुछ भी नहीं लगते इनके सामने. तो इट इज क्रेजी. बट एट द सेम टाइम आज नेशनल मोइटो डे भी है एंड द वेदर कॉल्स फॉर इट. तो एंड आई वुड से कि एक ग्रीन चिली को बस काट के उसमें डाल दो एंड एंजॉय दैट विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, यू गोना लव इट. ओ बाय द वे, नेशनल पूल डे भी है. पूल डे, स्विमिंग पूल डे, सो एंजॉय अ डिप इन अ स्विमिंग पूल आज नहीं तो कल, क्योंकि पूरा वीक यही वेदर रहने वाला है.
0: With Anchor, we are the Leica Radio Network, now with 3 Asian radio stations in the UK.
1: Enjoy this beautiful track and I'll see you in next hour with some Bollywood doors, so get ready for it. And if you love this track, drop me a message right away.

0: Mic Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: आज ये दिन भी सनी सनी बहुत तगड़ा वाला सनी है एंड इट्स बीन अ कपल ऑफ डेज एंड मोर कपल ऑफ डेज इट्स गोना बी द सेम टू बी ऑनेस्ट द एसी एयर कंडीशनर इज नॉट एंड एयर कंडीशनिंग इज नॉट वर्किंग इन द स्टूडियो एंड मैं पीछे से सनसेट देख रहा हूँ इट इज सो ब्यूटिफुल बट ट्रस्ट मी जो पीछे गर्मी जो ऐसे लग रही है आई फील लाइक आई एम हैविंग अ हीट मसाज ऑन माई बैक अर्लियर इट वॉज बट नाउ द सन सीम्स टू बी प्रीटी डिसेंट एंड ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम बाकी देखो क्या कहते हैं लास्ट आवर में आ गए हैं तो फिर बॉलीवुड की बातें होगी बर्थडेज की बातें होगी खोसला का घोसला मूवी अगर आपने देखी हो एंड वैसे अमेजिंग एक्टर है विनय पाठक आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एंड एक मूवी है जिसमें इनका एक डायलॉग है आई थिंक 100-200 साल बाद भी अगर फन इंटेंडेड मूवी अगर आप देखोगे ये जवानी है दीवानी एंड जिसमें रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण सिद्धार्थ रॉय कपूर अमेजिंग स्टार कास्ट एंड इसमें एवलीन शर्मा भी थी दे वेंट आउट फॉर अ ट्रिक एंड ये ब्यूटिफुल सा डायलॉग जो आता मेरा बदन धूत रहा है सो माई बॉडी इज बर्निंग ऐसा कहना था इनका बट मेरा बदन धूत रहा है बिकॉज शी कुडंट स्पीक हिंदी एंड शी ट्राइड एंड दैट टर्न आउट टू बी अ वेरी फनी डायलॉग सो यस ऐसे डायलॉग्स की भी बातें होगी आज उनका भी बर्थडे है एवलीन शर्मा को भी हैप्पी बर्थडे बाकी आई लव दिस ब्यूटिफुल ट्रैक कौन सा पता है अरे सुन के देखो जी
0: द माइक ड्रॉप विद एंकर एंकर विद माइक ड्रॉप ऑन लाइक रेडियो

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: प्यार में गुम जाओ बट शाम तक वापस आ जाओ, इसमें मैं बिलीव करता हूँ। ज्यादा घूमोगे ना तो पूरी लाइफ घूमते रह जाओगे। जस्ट किडिंग, बट या सच्ची मोहब्बत का नशा ही कुछ और होता है, एंड जिसको मिल जाए उसको पता है, और जिसको ना मिले ना उसको ज्यादा एहसास है इस बात का, बिकॉज उसके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है फॉर द लव ऑफ हिज और हर लाइफ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना। बाकी जैसे आपने कहा कि ये गाना सुनना चाहते हो, लो आ गया, दिलजीत का गाना भी आएगा इस आवर में जैसे वादा है मेरा। बट एट द सेम टाइम गुम है किसी के प्यार में मैंने एक और रीजन से प्ले किया है। शादी का सीजन चल रखा है, बोनी कपूर की डॉटर एंड अर्जुन कपूर सिस्टर अंशुला कपूर गॉट मैरिड। वाओ, इट वाज अ ब्यूटीफुल गेट टुगेदर ऑफ ऑल द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड व्हाट अ फन वेडिंग इट वाज, इट सीम्स लाइक बहुत अच्छा लगा देखकर। बट उससे ज्यादा मजा आया ये खबर सुनकर कि आमिर खान गॉट मैरिड फॉर द थर्ड टाइम एंड इट इज ही गॉट मैरिड टू गौरी नाउ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज एंड कांग्रेचुलेशंस टू द मैरिड कपल्स एंड आई होप वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। बाकी हम अपने म्यूजिक एंजॉय करते हैं, बाकी ये खबरें भी देते रहेंगे, बाकी चीजें भी होती रहेगी, और बाकी कितनी चीजें बाकी है देखो, वक्त तो कुछ 32 मिनट्स का ही बाकी है, सो लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट।
2: Drop with Anchor.
3: Hi, मैं हूँ रुबीना खान, सुनिए मुझे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में दोपहर 1 से 4 बजे तक द मैगजीन शो में।

0: आई एम श्योर प्यार को हो जाने दो और किसका इंतजार है पता है? आई एम श्योर मेरा इंतजार है आपको एंड आई एम हियर
1: एंकर विद माइक ड्रॉप ऑन लाइका रेडियो लाइका रेडियो.
0: Yes, I am pretty sure that you are waiting for me always. कि Saturdays को ये आ जाता है full on बढ़िया गाने बढ़िया बातें लेकर है ना. तो and this song was from the movie Dushman 1990s का ये बेहतरीन वाला गाना उत्तम सिंह की आवाज में and संजय दत्त. अगर आपने इस मूवी में देखा है संजय दत्त को, by God, it's beautiful, beautiful, beautifully made and at the same time पाकिस्तानी hit of the hour का वक्त है. पर उससे पहले मैं कुछ चीजें बताने वाला. July is a big month. रामायण मूवी जो आने वाली है रणबीर कपूर की, वो नितिश तिवारी जो डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके ट्रेलर का टीजर हमने सबने देख लिया, बट ट्रेलर उसका रिलीज डेट आ गया है. दैट इज गोना बी 24th July एंड इट्स अ बिग डे. लेट्स सी हाउ इट गोज एंड मजा आने वाला बिकॉज इंटरनेशनल बॉलीवुड एंड हॉलीवुड का कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर, बड़ा कोलैबोरेशन हो रहा है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी रियली गुड बिकॉज रणबीर कपूर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड. एट द सेम टाइम धमाल 4 आ गई, वेलकम टू द जंगल आ गई, इतनी बढ़िया कॉमेडी मूवीज आ रही है बैक टू बैक. बट पर्सनली मैंने एक मूवी है मोआना, एक एनिमेटेड मूवी थी, उसका आई है ड्वेन जॉनसन उस मूवी में है एंड या सो ये मूवी भी आई है. सो ऐसे ही मूवीज की भी अपडेट देता रहूंगा कि कौन कौन सी मूवी रिलीज हुई है. बाकी अगर आपको कोई बेहतरीन गाना सुनना है तो मुझे आज बता दो, क्योंकि मैं नेक्स्ट सैटरडे प्ले करूंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 3 गाने प्ले कर सकता हूं और वो 3 में से ये पहला वाला गाना आ रहा है.
1: The Maestro with Anchor, the Pakistani hit of the hour, is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: I wanted to play this song, Diljit Dosanjh ki awaaz, and the song ka name would be Charmer. And you know, yahan par Charmer kaun hai? Kehte hai na ki har industry ka ek don hota hai. So yes, radio ka Charmer don main hi hoon. And Saturdays main aa jata hoon mic drop lekar 7 to 10. Ab mera jaane ka time ho gaya hai. But jaane se pehle main ye kahunga ki you know, what is happiness? What is success? Shahrukh Khan ki ek baat kehna chahunga. Unhone jo first property li thi, jo apartment mein rehte the, aaj ke date mein wo puri building ko purchase kar liya gaya hai. And so that dream should be there ki ye आपकी जर्नी है एंड यहां यहां मैंने जहां जहां कदम रखे वो कदम मेरे निशान रह जाएंगे वहां पर. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड सक्सेस एंड किंग साइज लाइफ टू बी ऑनेस्ट एंड दैट इज सो गुड. हाँ, सो यही बात हमारी भी है. हम जो सोचते हैं वो हम करते हैं एंड मेहनत करते हैं, प्रोडक्टिव रहना में बिलीव करते हैं. सक्सेस आज नहीं तो कल आपके कदम चूमेगी. शहर अजनबी है, लोग अजनबी है, पर कहते हैं ना, व्हेन यू चेज योर ड्रीम्स, सक्सेस आपके कदम जरूर चूमती है. जैसे मैंने अजनबी शहर की बात करी है, तो जाते जाते ये अजनबी शहर वाला ब्यूटिफुल ट्रैक ओनली फॉर यू. एंजॉय दिस ब्यूटिफुल ट्रैक. स्टे गुड, स्टे लव्ड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप अ बिग smile on your face. Aur hum milenge chalte chalte jaldi next weekend, same time same show. Mic drop lekar aa jaunga Leica Radio Greater Manchester pe. This is Ankur signing off for now with a big hug for you. Take care, enjoy your weekend and enjoy the whole week. Do miss me thoda sa.
0: The Mic Drop with Ankur, Leica Radio Network, now the home of Leica Radio Greater Manchester.
1: Love the music, लव दिस सॉन्ग एंड इस मूवी के सारे गाने बेहतरीन. सोनू निगम की ये आवाज, अजनबी शहर फ्रॉम द मूवी जाने मन, सलमान खान, अक्षय कुमार एंड माय फेवरेट प्रीति जिंटा. ओके, आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे 7 to 10. माइक ड्रॉप लेकर आता हूँ, अंकुर मेरा नाम. एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आना आप सभी के लिए, दैट्स माई काम.

0: This is Leica Radio, Greater Manchester.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected. वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
0: Advertise your brand on Leica Radio, Greater Manchester, and reach out to hundreds of thousands of listeners across the northwest of England. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222.
2: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
3: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
0: The biggest Asian love songs across Manchester. The Love Sound. Leica Radio.

0: Radio. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayana ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
1: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner. Like our radio.
2: South of travel, 7 days a week. South of travel, 24 hours a day. We're at our peak.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Southall Travel.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there.
5: Southall Travel, at all protected.
6: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
7: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
8: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
7: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
8: दिल तो टूट भी गया,
7: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
9: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
7: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
0: We are Leica Radio.
10: Leica Radio.
0: Listen to us in Greater Manchester and Greater London. Don't forget, in London, we're available on 1458 AM and DAB. The biggest Asian love songs across Manchester. The Love Sound. Leica Radio.